उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: Admissions open at Birkat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
1: 101 FM.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़।

0: आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक।
1: बाबूले सीरे शुमारे मार

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
1: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ़ कर।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहाँ हम आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने लाहौर में मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमू सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। नायब वजीर आजम ने आज लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 983वें उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के बहरी तहफ्फुज के इदारे ने पाकिस्तानी माहिगीर कश्तियों पर निगरानी के निजाम की तंसीब के लिए एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच दम्बोला में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: This is FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above. 101.101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का फरमाए। आमीन।

तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं

तुम्हें कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर ने लाहौर में मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कौमी इस्तेहकाम और समाजी हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए सूफिया-ए-किराम की तालीमात का फरोग नागुजीर है। अमरीका के सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने चेक पॉइंट्स और तलाशी की कार्रवाइयों में इजाफा करके रिहायशियों पर आयद पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं।
1: दिस इज FM 101
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Thank you so much. Thank you.
1: FM 101, आपके मन की आवाज, आपके दिल की धड़कन।

यो मरका आ गयो मरका और नेड़े वो ना कि नहीं पर गुम हो गयो गायब हो गयो मैं तोड़ा अपना भिराई ने तोड़ा अपना आरजी ने गुलाम ली जावेद और मैं तोड़ा सिर खावना मोड़ हूँ मैं की दसा पूरे त्रै बजे तक मैं तोड़े नाल ही ने तुसी किदे हो तुसी मैनू दसो मैनू कोई ने नज़र पे आमदे मैं बड़ा उदास होया बत्या पूरा हफ्ता मैं आखा जी मेरे लिसनर जेड़े ना वो जे मेरे प्रोग्राम दे विच ना आवण ते मैं उन्हां दे नाल गल ना करा तो मुड़ मैनू चस ना आई पी आमदी ते हुण मैं भजदा भजदा भजदा आया इस वास्ते कि मैं तुहाडे नाल करनी है गल तुहाडे वास्ते करना है प्रोग्राम तुसां रहना मेरे नाल ते कुछ गल्लां करांगे दुखां दियां कुछ सुखां दियां कुछ मौसम दी गल भी करांगे ते एक गल होर ने ओ सुन लवो आ सलाब पैम दिन ते सलाब दे विच एक तां हिफाजती तदाबीर जिहड़ियां ने ओ असां करनियां ही करनियां ने खासकर ओ इलाके ओ जिथे सैलाब आ जांदा है उन्हां नूं चाहीदा है कि ओ पहले ही सैलाब तों पहले किसी महफूज मकाम ते अपड जावण ते जे अल्लाह ना करे कोई सैलाब तुहाडे आसे पासे आ गया ते फिर ख्याल करो अपना अपने जानवरां दा अपने रिश्तेदारां दा अजीज़ अकारिब दा ते खास करो बंदे जिन्हां दे या वह घर सैलाब दे विच जिन्हां दे घर लुढ़ गए ने या फसलां लुढ़ गईयां ने या होर कोई नुकसान होया ते सानूं चाहीदा कि औखा वेला इस औखी घड़ी दे विच असीं उन्हां दे नाल खलो रहीए उन्हां दा साथ देवीए ते उन्हां नूं दसीए भी असीं तुहाडे बां बेली हैं तुहाडे सुख दुख दे साथी हैं और तुहाडे नाल खलोते हैं ये उस सूरत च ही होना जिहड़ा साडा जज्बा जिहड़ा है सच्चा ते खरा होएगा अपने पाकिस्तानियों वास्ते अपने भरावान वास्ते अपने गवाढ़ियों वास्ते अपने रिश्तेदारों वास्ते ते सो तुसी भी इंज करो ना कि जिथे जिथे मालूम होंदा है कि असी किसी दे काम आ सकते हैं या किसी नूं साडी लोड़ है खास करके सैलाब वाले जिहड़े बंदे ने उन्हां दी लोड़ दे विच असी उन्हां नूं पूरा आवीए उन्हां दे नाल गल करिए ते बाकी गल्लां तां फिर चलदियां रहणियां नहीं।

हाय कमला क्या बात है शमी मापी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थोड़े सलाम पहुंच गए रूबीना जट्टी तक, तारिक भाई तक और बाकी सारे लिसनर तक। परी चुपुर जी, तू साडा प्रोग्राम सुनते पहले आखते ने लाइट गई है, प्रोग्राम थोड़ा सुन रही है, चलो इसे वजह तू मेरा टाइम पास हो रहा है, वरना हाय मेरे अल्लाह वाकई जेडे लाइट जाती है तो UPS काम ना पै करता हो बंदा बड़ा बेचैन और परेशान हो जाता, तो फिर अर्जी गुलाम अली का प्रोग्राम हो चलो गुजारा हो ही जाता। उस आफिया खान थोड़ा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उजमा खान काशिफ इकबाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई काशिफ इकबाल। साजिद पंजाब पुलिस तो साढ़े प्रोग्राम दे विच शामिल ने, साजिद भाई थैंक यू सो मच।

लाए मारका भाई आज चस बन गई ने, यकीन करो बड़ी चस बनी। खान बाबा साहब की कॉल आई तो उन्होंने ओ मेरी तबीयत साफ की, तबीयत साफ की इंज मॉलिश की, इंज जिन्हें बंदा कपड़े नहीं धो देता सर्फ पा के, इंज उन्हें मेरी तबीयत साफ की। उन्हें आख्या एड्डी झूठ बोलना गुलाम अली, है 6 दिन का तू स्टोर कर लेना पेट के खाना, ये किने किया भाई। कहिंदे ने झूठ बोली जाना है सुनिया। मैं फिर दस्या, मैं आख्या इंटरटेन करना जो कमरदा, कहिंदे हाँ जो कमारिया कर बस झूठ ना मारिया कर। खान बाबा साहब डिफेंस तो साढ़े प्रोग्राम के शामिल आए हैं, वेलकम करदा, खुश आमदीद आखदा, जी आया आखदा। यकीन करो खान बाबा साहब जदों तुहाडी कॉल आउंदी है मैं महसूस होंदा कोई अपने बड़े आ गए ने, कोई अपने मोहतरम आ गए ने, कोई वो जिहड़े सक्के रिश्तेदार ने वो आ गए ने। माई मेरिया रौंद ना मारी मैं दाल आया जिंद जान दा, बहुत शुक्रिया बड़िया मेहरबानियाँ। और रुबीना जट्टी साहब आखते हैं कि भाई कौन रुसया जे किनू मना रहा है जी, मैं आख्या कोई नहीं रुसया किसी नहीं मना रहा। और शमीम आपी खान बाबा साहब जरा सुनना, शमीम आपी की कॉल सी तुहाडे तो पहले, और वह कह रही सन कि मैं उस तुहाडी गल ते इतना हस रही सा, इतना हस रही सा जदों तुसां आख्या खेस बुक, ये जने मैनू पता भी तुसीं एडे आदम पढ़े ने ते एडे बोले भी ने, ये जने सानू हसावण वास्ते तुसीं बोलदे हो, ते यकीन करो जने मैं कल बैठे हस हस हस के किधरे गई हाँ भी इस मुंडे ने फेसबुक नू खेसबुक बना दिता है। तो खान बाबा साहब ये असल इस वास्ते होंगे कि चलो जे दोस्त बाप भैन बिरा सुनते पे ने वो खुश रवन, वसते वसते रवन, मेरे प्रोग्राम के शामिल होंगे रवन। रायवेण तो प्रोग्राम के शामिल होए ने मोहम्मद नवाज, मोहम्मद नवाज भाई थोड़ा बहुत शुक्रिया बड़िया मेहरबानी है, तुसा कॉल भी की 2-3 मैसेज 4471 से किए और फरमायश तुहाडा हुक्म लो जी सिर अखी ते।

फारूक भाई बहुत शुक्रिया, बढ़िया मेहरबानी। आतिक भाई थैंक यू, मजहर भाई बहुत शुक्रिया, सिंधी साहब थैंक यू सो मच, फैसलाबाद थोड़ा बहुत शुक्रिया, बढ़िया मेहरबानी है प्रोग्राम सुनते पे हो। लाहौर तो एहसन खान बखर तो साडा प्रोग्राम सुनते पे ने, प्रोग्राम पसंद पे करते हैं।

बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 17 अगस्त 1947 को जुमातुल विदा के मौके पर कौम के नाम पैगाम में फरमाया, पाकिस्तान की सरजमीन में जबरदस्त खजाने छुपे हुए हैं, मगर इसको ऐसा बनाने के लिए जो एक मुसलमान कौम के रहने सहने के काबिल हो, हमें अपनी कुव्वत और अपनी मेहनत के जबरदस्त जखीरे का एक एक जर्रा सर्फ करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग इसकी तामीर में दिलो जान से हिस्सा लेंगे।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां आप लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम भजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी या चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। तो मानो।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत नसीम, आपके लिए मोहब्बतों का पैगाम लाई हूँ। आप सबको जिसमें आज़ादी मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आप सबको खुशहाल रखे।

मैं संगीता, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहाँ हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हैं।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

ओके जी, हम लोगों से टॉपिक हम शेयर किए देते हैं कि टॉपिक हम आज क्या लेके आए हैं, किस चीज़ पे हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों की तवज्जो जो है दरकार है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, कि कौन सी चीज कुर्बान करना सबसे मुश्किल होता है। ये कुर्बानी वो कुर्बानी नहीं है, ये खुद की कुर्बानी है। मेरे नज़दीक आई थिंक मैं जो है आपकी अना जो है वो कैरिट्यूड जो होता है वो मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में इसको अगर लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप पल्ले होवे खोजना तो इंसान वैसे ही आकड़दा रहे फिर तेज औखा काम। दस बज के हुआ चाहते हैं 20 मिनट 1-1 टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। घड़ियां ठीक कर लें अपनी, तीन मुमकिन जरिए आपके हमारे रबते के कि आप मुझसे रबा कर सकते हैं 0511100109202540। अपने सेलफोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और हमें बताएंगे। कौन सी चीज कुर्बान करना सबसे मुश्किल होता है, और फेसबुक पे स्टेटस मौजूद है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। कौन सी चीज कुर्बान करना सबसे

कीजिए मैसेज है जी 4471 पर. द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू सैक्रिफाइस इज ईगो डेफिनेटली.

0: जी मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, और अक्सर या कभी देनी पड़ती है अपनों के लिए और अपनों को बचाने के लिए, नौकरी के लिए।
1: आप तो नजदीक से नजदीक
0: ओके जी, और
1: आप तो नजर
0: मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल अपना अना और गुरूर कुर्बान करना, क्योंकि इंसान गलती मानने से भी हिचकिचाता है।

तो हमारे रेडियो के बड़े अच्छे एक मेंबर है यहाँ पे, लेकिन उनके बड़े ही जो है ना अजीब किस्म के काम होते हैं, लोगों के फोल्डर्स जो हैं वो डिलीट करना उनका सबसे जो फेवरेट, जो उनका कह सकते हैं मशगला जो है ना वो यही है। ना वो अपनी जिंदगी सुकून है तो ना वो किसी होर की जिंदगी जरा सुकून रहन देंगे। और जब से आया है ना उस बंदे के समझ से बाहर है वो, टोटल है कोई 3 फुट का।

मतलब मेरा वो वाला फोल्डर उस बंदे ने डिलीट किया है जो कि मैं पिछले 2 साल से उसको मेंटेन कर रहा हूँ। उससे पुराने हैं, 2024 से ऑनवर्ड जो है, अपना हाँ 2024 तक उसमें काफी सारे सॉन्ग्स हैं मेरे पास, लेकिन उसके बाद अब तक जो है वो सारे ही सारे जो है वो भाई साहब ने

It's a new song. He's super fantastic. My all-time favorite singer, Mustafa Zahid ka. अभी मैंने इसको रटा नहीं है, लेकिन मैं जरूर इसको भी रट लूंगा। इनकी जो वॉइस टोन है ना, वो सीरियसली

0: 051-111-0101. Assalamu alaikum. Hello. ये हमारा जो इस वक्त हमने एक तो हेडफोन्स लगा के जो रखा है वो भी, और हमारा जो माइक है ये बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है। ये घड़ी की टिक टिक जो है वो भी आपको सुनाई देती होगी इसमें। सो जी नेक्स्ट कौन है, कहाँ से हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं?
1: मैं कामरान बात कर रहा हूँ, पिशावर से।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। तुम कैसे हो?
0: तुम कैसे हो? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का।
1: जी हमारा, मुझे उर्दू ज्यादा नहीं आती है, बस मैंने सिर्फ सलाम को सलाम कलाम को कल किया था। मैं सिर्फ ये बोल था कि जो क्रिकेट अपडेट की हमारा पास शेयर भी करो।
0: क्या करूँ?
1: रेडियो क्रिकेट अपडेट नहीं है पाकिस्तान टेस्ट मैच का?
0: जी जी जी जी जी जी,
1: वो भी शेयर करेंगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह। मैं भी मसूर तो हमारा ठीक नहीं है, बस वो तुम्हें सही समझ जाओ ठीक है।
0: जी समझ गया, ओके मैं शेयर करता हूँ जी, देखते हैं साथ साथ क्रिकेट मैच का क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
2: क्या हाल है आपका? ठीक है
0: शुक्र अल्लाह का। नाम बता दे, तारुफ करा दे, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं मोहम्मद दाऊद बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद दाऊद बात कहाँ से?
2: गुजरहान से बात कर रहा हूँ, आपका शो सुन रहा था।
0: अच्छा आपको शो पसंद आया?
2: जी जी कुछ पसंद आया, लेकिन आप कुछ गाने अच्छे नहीं लगा रहे।
0: गाने अच्छे नहीं लगा रहे?
2: नहीं
0: मुझे तो अच्छे लग रहे हैं।
2: नहीं मैं बारहवीं के गाने लगाए।
0: अच्छा जी, नहीं हजारवी के गाने अब सारे तो नहीं मैं लगा सकता ना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं
3: यूसुफ भाई, क्या हाल है? त्रेडवान बोलना था।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। कैसे हैं, तबीयत से ठीक है आपकी?
3: अल्लाह ने शुक्र है, अल्लाह ने एहसान है, बड़े तवील अरसे तो बात तुसा ना गल होनी पई है।
0: हां जी काफी टाइम हो चुका है।
3: क्योंकि बड़े बड़े शो विच कॉल मिलाई, तुसा ने शो विच कॉल मेरी अज बड़े टाइम तो बाद मिली।
0: मुश्किल है
3: वक्त से गरेज करता हूँ। अपनी दो तीन फौतकी हुई है, जमराती हुई है, चलीसवी हुई है, घर वालों को भेज दिया है, बच्चे को भेज दिया है,
0: अल्लाह खैर
3: करे। हाजिरी तो देता हूँ, 10 दिन तक तो हमारी पूरी जो है वो खत्म नहीं होती, 10 दिन के बाद दुआ खैर होती है। तो दुआ खैर में भी जब दुआ खैर का वक्त था तो मैं गया हूँ, यानी कि कतराता हूँ, तनहाई पसंद करना चाहता हूँ, करता हूँ।
0: वक्त आप कहते हैं कि वक्त जो है उसको कुर्बान करना मुश्किल
3: का। हाँ उसको, और दूसरा भरोसा किसी इंसान पर इस दौर के अंदर, पुरफितन दौर के अंदर भरोसा, भरोसे को भी कुर्बान नहीं करना चाहता।
0: अच्छा
3: क्योंकि उसने ये है कि जितना भी मैं अल्लाह के नजदीक रहना चाहता हूँ, कि जिक्र में रहना चाहता हूँ, मतलब ये है कि अगर उधर जाऊँ तो फिर वो तस्बीह रह जाती है, दरूद शरीफ की जो तादाद है वो रह जाती है, क्योंकि 19,000 बार दरूद शरीफ की तस्बीह है वो शाम तक मुकम्मल करनी होती है। तो फिर बंदों में जब रल मिल जाता हूँ तो फिर वो ध्यान उधर ही हो जाता है, फिर तस्बीह नहीं चलती। फिर
0: ठीक हो गए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप
3: सुनने वालों को सलाम, मलिक को सलाम, और आपके लिए ढेरों दुआएं।
0: अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। 051-111-0101। ये कुछ मिक्स मिक्स सॉन्ग क्यों चल रहे हैं, ये क्या हो गया इसको? ये हमारा प्लेयर क्या मसला कर रहा है कोई, या ये भी शरारती बच्चा हो गया है? वैसे मेरा बिल्कुल मूड नहीं था ये वाला सॉन्ग लगाने का, चले कोई बात नहीं, चले सुन लेते हैं, इसको भी सुन लेते हैं, ये भी तो हाँ ये वाला था। خان صاحب کا ایک اور بڑی سی خوبصورت سی بڑی سی واہ بڑی خوبصورت سی پرفارمنس لائیو پرفارمنس یہ ہنر بھی کمال کا رکھتے ہو صاحب پہلے شدت سے اپنانا پھر ترتیب سے بچھڑ جانا اور اب لہرا کے تو میں نہیں پڑھ سکتا اس سے

ओके जी, कौन सी चीज़ कुर्बान करना सबसे मुश्किल होता है? और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बातें आपको समझ आ रही है। ओके, चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ये बहुत

0: कुर्बानी की बात की है। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। 0511111001। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
1: ओ उस्ताद जी, उसने यूसुफ फैल का उस्ताद जी रद्द बिला तो जी है उस्ताद जी, जिन्हें रहमत हो आए ना
0: जी,
1: नहीं उन्हें रहमत भी कुर्बान के छन सरकार के छन सोने हो।
0: आज मैं इतना पेट्रोल खर्च करके मैं बहुत दूर आया, कितने कितने वस्तुओं से सदके खत्म हो जाए।
1: मैं बड़ा सुकून मिलना जिले तो ना गल करना है जी, वो काड़े होने के आई था मैं लेट आ पर माड़िया पिटिया तक मैं लेट आना वा, लेकिन मैं बात जनरल ना ना कर अपने को गलती ना करी के जब ताद रात ना हो जाए।
0: अब तू सा आज जट ने प्रोग्राम में जी फोन मारे सा कोई क्रिकेट नहीं गल करे करो।
1: वो कह मैं सारा मार रहा लेकिन उस्ताद जी मैं तुसा सा जिला जिला ना मैं सब नहीं खाना।
0: हां अपना आंचल संभाल के आते हैं आप।
1: मैं संभाल के आता हूँ कि मैं कैसी गलती लगा दू, मैं एक दफा गलती की थी ना उस्ताद जी तो अच्छा। मैंने यकीन जाने मैं उसी टाइम माफी मांगी, उसके बाद ही माफी मैंने फिर आनेर माफी मांगी है।
0: अच्छा।
1: मैं अपनी गलती को कुर्बान करना चाहता हूँ। अगर मैं किसी कोई गलती कर जाऊँ उस्ताद जी मुझे बाद में सोच आ जाती है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, कोई पता नहीं कि जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं माफी मांग लेता पूरी तौर पर माफी मांग लेता।
0: अच्छा क्या माफी कैसे, क्या कान पकड़ते हैं या कुकड़ बनते हैं?
1: मैं कान भी पकड़ सका आपकी खातर, मैं कान पकड़ के लिए तैयार हूँ।
0: नहीं तो कुकड़
1: तो
0: बनते
1: जी, मैं खुदा की कसम मैं कभी झूठ नहीं बोला
0: जी।
1: तो
0: जी
1: मैं,
0: पता चल रहा
1: है, माफी मांग लेता हूँ हर बंदे को माफी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ यार कोई पता नहीं जिंदगी का रात जो इधर हो तो अगली कब्र में हो कोई पता नहीं।
0: बिल्कुल जी, आजकल एडवांस दौर चल रहा है तो समझ नहीं आती ना बंदा भी चुकया जाए।
1: जी जी उत्साह जी, मैं गलती जो है ना बस इसकी गलती को मैं कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा था, यही बताना चाहता हूँ।
0: गलती को कुर्बान करे और खाल जो है ना वो हमें भिजवा दे फिर।
1: जनाब
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और चाहत में क्या यार, मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है जिंदगी में कोई बात नहीं, हम संभाल लेते हैं ना।

0: कुछ आंखों की जिक्र की हम बात कर रहे थे तो
1: वो कौन है?
0: एक क्लासिकल ट्यून है, मुझे पर्सनली जो एक क्वालिटी म्यूजिक जो है हमेशा से मेरी पसंद रहा है।

जो मुझे तुझसे मिला। इंसान तो हर उस चीज के शुक्रगुजार हो जाता है जो किसी को मिला नहीं।

मन अटकिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल नदियों पार रांझण दा ठाणा कीता कॉल जरूरी जाना मिनता करा में मला दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल।

बस मशगूल हो जाते हैं सामेन 55 मिनट और आपका मेरा साथ इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। और अगर इस खूबसूरत से वक्त में अगर आप ड्राइव करते हो मुझे सुन रहे हैं, ड्राइव वेरी केयरफुली, फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आपकी खूबसूरत जिंदगी के साथ बहुत सारी मजीद जिंदगियां जो है जुड़ी हुई हैं। हम आपको गारंटी जरूर देंगे कि आपका ये सफर जो है वो बहुत खूबसूरत गुजरेगा।

ये मीलों का सफर, ये दूरी, ये मुसाफत कोई मायने नहीं रखती यार। लेकिन जो चीज चाहिए वो है प्योरिटी।

से वापस आते हैं एक शॉर्ट टाइम से ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस के बाद। तो क्या आप सुन रहे हैं शब गपनाथ, जिसको मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा।

क्योंकि हमारे बहुत अच्छे एक पहले है, इसी तरह के एक भाई थे ना, वो भी हर तरह की इस तरह की एक उन्होंने एक रूटीन बना के रखी थी। फिर ऐसा हुआ कि जब हमने स्पेशली उनको अप्रोच किया, और फिर जहर सी बात है कि इदारा और इदारे के साथ फिर आप इस तरह के पंगेबाजी करें, तो बाद में वो कहते हैं जी मैं तो गरीब बंदा हूँ जी, गलती होगी जी मुझसे और नेक्स्ट मैं ऐसा नहीं कुछ करूँगा। जहर सी बात है फिर वो एक सिलसिला है ना, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आजकल तो वैसे भी ये चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं, साइबर क्राइम और साइबर जो इस वजह से आप नहीं करते ऐसे काम। ये मतलब कुछ टीन एज में कोई छोटा बच्चा हो ना तो चलो ठीक है मान लिया जैसे, ये कोई बात नहीं जी बच्चा है खैर है, अगर थोड़े अपने बच्चे ने तो तुम की सबक देना चाह रहे हो ना।

थैंक यू सो मच जी उमर इकबाल खान, हमें सुन रहे हैं उमर बंगोश, और बड़ा मिस करते हैं जी। बिल्कुल, हम भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और बड़ा अच्छा एक लाइफ का कहते हैं कि बेहतरीन जो एक वक्त हमने गुजारा है ना, वो गुजार चुके हैं। अब तो बस गुजर रही है, जिसको हम गुजार रहे हैं वो गुजर रही है, और उस पर भी शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत बहुत बेहतर मामलात रखे हुए हैं।

0: सारी रौनक तुम्हें से ये महफिल की है।
1: तेरे दम से हसी अंजुमन।
0: ओके जी, और फातिमा कहती हैं कि भाई आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे सीखी हैं, थोड़ा गाइड करें। ये जमाना जो है ना, ये बहुत बड़ा उस्ताद है। वैसे कि जी 2012 में या 11 में आई थिंक रेडियो पे तो हम काफी टाइम से हैं, तो ऐसे ही हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप दिन में क्या करते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल फ्री होते हैं और शाम में रेडियो आते हैं, कुछ भी नहीं करते, वेले हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है, आप यहाँ पे आ जाएं। और मैं सुबह चला गया, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, चाय पी। और उन्होंने कहा कि ये आपकी सीट है, हमने आपके काम के बारे में सुना हुआ है, आप प्रोटेक्शन रिलेटेड काम करते हैं और हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो ये चीज़ें थोड़ी सी जानता हो, समझता हो। बाकी जो आप काम करेंगे और जो आपका काम करने का तरीका है वो हमें पसंद है, आपने वैसे ही काम करना है। तो जी नेक्स्ट ही डे हमारी हो चुकी थी वहाँ पे ज्वाइनिंग, और कुछ सेलुलर सर्विसेज जो हैं उनकी हम सर्विसेज जो हैं वो बनाया करते थे। उसके बाद वैसे मेरे टाइमिंग थी ऑफिस की सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक, लेकिन मैं कभी ऑफिस पहुँचता था 12 बजे, कभी 1 बजे क्योंकि जब छुट्टी, ये जो लोग काम करते हैं ना प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है, इसमें फिर छुट्टी वाला काम जो है बहुत, जब तक आपको प्रोजेक्ट एंड नहीं करना पड़ता ना तब तक आप उठ नहीं सकते, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे आप आते हैं तो वो सारी चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं आपके माइंड से। ये जो आप कमर्शियल सुनते हैं, प्रोमोज सुनते हैं, ये जो लोग बनाते हैं ना, ये काफ़ी देर जो है उस चीज़ के साथ खेलते रहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ आपके माइंड को क्लिक करती है कि यहाँ पर ये चीज़ सूट कर सकती है। तो जब उन्होंने देखा कि 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं और ये साहब जो है ये अपनी मर्जी से आते हैं, अब जाने का उनको नहीं पता था कि मैं जाता हूँ रात को 9-10 बजे भी जाता हूँ, लेट भी जाता हूँ, लेकिन उनको पता था ये आते ज़रूर लेट हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया, एक उसी प्रीमिसेस के अंदर ही था, उनके अंडर सुपरविजन एक और डिपार्टमेंट था, न्यूज़ से रिलेटेड था, और वहाँ पर एक टाइम में 6 से 7 लैंग्वेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड होती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे ट्रांसफर हुए और वहाँ पे होती थी शिफ्ट, और 8 घंटे की शिफ्ट थी, उसमें 50 मिनट आपके पास होते थे ब्रेक के, उसी में आपने खाना भी खाना है, उसी में आपने अपने सारे मामला, चाय भी पीनी है, गपशप भी लगानी है, नमाज भी पढ़नी है, सब कुछ उसी में करना है आपने। तो एक तो थोड़ा सा टाइम के हवाले से ज़रा, हाँ जी ठीक है जी, इतने काम में इतना ही होना चाहिए, और साथ साथ लैंग्वेज सीखने का जो एक सिलसिला था फिर वहाँ से शुरू हुआ। तो ऐसे हमने सीखा, तो सीखना चाहिए लाइफ में। और जब आप कहते हैं कि नहीं अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं जाके आपको ज़रूरत पड़ जाती है। उस वक्त जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की वो आज मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, और काफ़ी हद तक मुझे चीज़ों के बारे में भी पता है। राफिल दे दियम दिल बे दस्तक, मारा याद हो तू रा फरामोश। गाफिल दे दिया हमने दिल अपना तुम्हारे हाथों में, हमें याद रहा और तुम भूल गए।

11:07 सामने 22 मिनट और आप लोगों की कॉल्स में शामिल करूंगा 0511000109202540। ज्यादा मंजूर कहती हैं कि ये सॉन्ग आपके लिए है।

0: और मेरी हर।
1: और कह रहे कि आज वीकेंड था और बहुत ज्यादा घर में काम और
0: मेरी जिंदगी तुम
1: दिन भर की थकावट, लेकिन आपके शो का जो इंतजार है वो
0: है, ये अटल
1: अलग ही उसका चाम है।

0: कुछ मुझे जरा थोड़ा सा, एक तो ऑफिस जाना पड़ा, दूसरे ये हमारे जो भाई है ना, इनको मुझे लगता है थोड़ी सी तबीयत इनकी ठीक करनी पड़ेगी। और ये थोड़ा सा अपने, जब आप दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो ये चीज़ मुझे कतई नहीं पसंद। और जहाँ मैं फिर थोड़ा सा पर्सनल हो जाऊँ तो वो फिर चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ।
1: रोशनी तुमसे है जाने।
0: अगर आप अपनी फैमिली मेंबर में ये चीज़ें इस तरह कर सकते हैं कि मेरी कोई दोस्त है जी, उनको जी सलाम, तो क्यों आपको सलाम? अगर आपकी इस तरह फैमिली मेंबर का कोई नाम लिखे तो तब आप

कहेंगे जी हम तो बड़े गैरतमंद हैं। तो मेरे भाई ये एक फैमिली चैनल है और आपके ही कमेंट में एक हमारे जो भाई हैं सारिम सुभान उन्होंने कहा, तो एक तो आपकी आईडी जो है वो फेक नाम से है, दूसरा ये एक फैमिली चैनल है, इखलाक के दायरे में रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कोई वो दौर नहीं है कोई 90s का या 80s का। मैं पहले आपको कह चुका हूँ और बड़े ही तरीके प्यार से मैंने बात की है और आपने अभी जब कॉल की है मुझे तो मुझे बिल्कुल नहीं इस तरह पसंद, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो किसी वजह से बैठे हैं और आप जैसे लोगों के साथ तो ट्रीट करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर ये ना हो कि उस वक्त आप तरले मिनते शुरू कर दें कि ये चीज ऐसे नहीं है तो आए तरीके से बात करें। एक मस्जिद जिस तरह के बाकी लोग आगे कर रहे हैं, आपका मतलब क्या सलमान खान, आपको मतलब क्या, आपको कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं? और नेक्स्ट अगर कोई बात करनी तो तरीके से करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कमेंट करने की भी बिल्कुल, और अपनी ओरिजिनल आईडी से बात करें। थैंक यू सो मच।

कुछ 11 बजे के हो जाते हैं 30 मिनट हो आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। ठीक रात के 12 बजे तक आप मेरे भाई मुझे कॉल करें और मैंने आपसे बात करनी है। ठीक है,

कि किस लिए चुप हूँ वजाहत भी नहीं कर सकता, मैं मोहब्बत में शिकायत भी नहीं कर सकता। एक एक करके परिंदों ने तो हिजरत कर ली,

एक एक करके परिंदों ने तो हिजरत कर ली, पेड़ हूं पेड़ तो हिजरत भी नहीं कर सकता। सानहा ये है उससे मुझसे जुदा होना है, और सितम ये कि मैं रुखसत भी नहीं कर सकता। कि किस लिए चुप हूं वजाहत भी नहीं कर सकता, मैं मोहब्बत में शिकायत भी नहीं कर सकता।

कि ये वक्त की रफ्तार कितनी खूबसूरत है, कि ये वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और फिर हम देखते रह जाएंगे।

कि जीते जी इतनी नाकदरी, इंसान कैसे जो है वो सह सकता है। के जान होते हुए बेजान बुरे लगते हैं, खुश अदा लोग परेशान बुरे लगते हैं। अच्छी लगती हैं मुझे नीलगुं आंखें, लेकिन उनमें ठहरे हुए तूफान बुरे लगते हैं। तेरी रहमत से तो इनकार नहीं है मौला, जेब खाली हो तो मेहमान बुरे लगते हैं। मैंने एक शख्स को क्या जीत के हारा मैं, अब मुझे खेल के मैदान बुरे लगते हैं।

मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफ हिजर है शोके विसाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है।

0: लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। ओके जी, एक हमारे बड़े अच्छे अजीज कॉलर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पोइट्री में काफी इनको जी। वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: आप ठीक हैं सर? खैरियत से?
0: शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर ये कहता हूँ
0: जी,
1: एक लाइन एफएम 101 की जो है
0: जी,
1: एक ऐसी है जिसमें आवाज तो जाती है टॉयलेट की अपनी वापस आती
0: है। अच्छा। सही।
1: मैं आपको सैयद मुबारक शाह की गजल सुनाता हूँ। मेरी आवाज आप तक ठीक आ रही है?
0: जी जी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है।
1: चले। कहते हैं कि अपनी आंखों में रखा उसने, क्या मतलब है? अपनी आंखों में रखा उसने, मुझको बीमारी कहा था उसने।
0: अच्छा।
1: और मैंने मतरूक किया था खुद को।
0: क्या बात।
1: मैंने मतरूक किया था खुद को, फिर मुझे छोड़ दिया उसने। फिर मुझे
0: छोड़ दिया उसने।
1: और किस तरह टूट के बिखरा हूं मैं, किस तरह जब्त किया था उसने। किस तरह टूट के बिखरा हूं मैं,
0: किस तरह टूट,
1: किस तरह जब्त किया था उसने। और शेर देखिएगा यूसुफ साहब के, कितने दुश्मन थे कि जो फर्ज किए। कितने दुश्मन थे
0: जी
1: कि जो फर्ज किए, जब मुझे दोस्त कहा था उसने।
0: हाय हाय।
1: जब मुझे दोस्त कहा था उसने, और फिर मुझे लफ्ज कहीं से न मिले।
0: मुझे लफ्ज कहीं से
1: पहुंचिएगा शेर तक कि फिर मुझे लफ्ज कहीं से न मिले,
0: न मिले।
1: एक ही लफ्ज कहा था मैंने।
0: हाय, क्या कहा था आपने?
1: एक ही लफ्ज कहा था मैंने, वो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या कहा था। मैं अपने आखिरी शेर है गजल का, अपनी आंखों की न मैंने मानी,
0: अपनी आंखों
1: और लोगों से सुना था मैंने। तो आपने कहा ना क्या कहा था, इसमें मैंने शेर पढ़ा कि मैंने सैयद मुबारक शाह, क्योंकि मैंने मतरूक किया था खुद को, फिर मुझे छोड़ दिया उसने।
0: के पहले मैं ना सुनी दिल दी, हूं दिल नहीं मेरी सुनता।
1: तो मैंने इस पे ये मतरूक का लफ्ज है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है ना, छोड़ा हुआ तर्क किया हुआ जिसके मायने हैं
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैंने एक शेर कहा था कि मैंने मतरूक मोहब्बत की है,
0: मैंने मतरूक मोहब्बत की है,
1: शायद आपको पसंद आया कि मैंने मतरूक मोहब्बत की है, दिल ने उस पे भी शिकायत की है।
0: अच्छा है। कि मैंने बच्चों को मोहब्बत से नहीं रोका मगर।
1: अच्छा।
0: मैंने बच्चों को मोहब्बत से नहीं रोका मगर शर्त रखी है कि पहले मेरा नुकसान सुने।
1: क्या बात है, खूबसूरत है, वाह वाह वाह वाह वाह। फिर सुनाए सर।
0: कि मैंने बच्चों को मोहब्बत से नहीं रोका मगर शर्त रखी है कि पहले मेरा नुकसान सुने।
1: लेकिन अहमद फराज साहब ने कहा था कि शेर तक कि जिंदगी में इतनी फरागत किसे नसीब
0: भाई,
1: इस जिंदगी में इतनी फरागत किसे नसीब, इतना ना याद आके तुझे भूल जाए हम।
0: ऐसे ही है,
1: ऐसे ही है ना,
0: बिल्कुल ऐसे।
1: कुछ नहीं, दुआओं में याद रखिएगा, आपसे बात हो जाती है अच्छा लगता है।
0: ये लाजिम नहीं कि तुझे आंखों से देखूं, तेरी याद का आना तेरे दीदार से कम तो नहीं।
1: दफतन लगेगी कैसी तीरगी, जब अचानक रोशनी हो जाएगी।
0: आई रोशनी हो जाएगी, ठीक हो गई जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कल।
1: थैंक यू,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज। और कभी कभी होता है कि फिर पलट कर सदा, ये सदाएं जो है ना, ये सदा लगाई तो परसाने हाल कोई ना था, गुमान था कि हर एक शख्स हम नवा होगा।

कोई भी इतना मजबूर नहीं होता अगर कोई आपके नज़रअंदाज करने के बाद भी आपके साथ है तो यकीन करें कि वो आपके साथ मुखलिस है, वरना कोई किसी के लिए अपनी इज्जत नफ्स को ज़ख्मी नहीं करता। लोगों को लोग मिल ही जाते हैं, इसलिए कदर करें उनकी जो बग़ैर मफाद के आपके साथ है।

कि मुमकिन है कि खा जाए ये हिजरत उसे कहना, मुमकिन है कि खा जाए ये हिजरत उसे कहना, हम झेल रहे हैं तेरी किल्लत उसे कहना। हाथों की लकीरों में तेरा नाम नहीं है और बढ़ती चली जाती है चाहत उसे कहना। बार पलट आए सीने से लगा ले, अब सांसों में होने लगी दिक्कत उसे कहना। किसी शख्स के जाने से कोई मर नहीं जाता, हाँ लहजों में आ जाती है शिद्दत उसे कहना। कहना के जमाने तो गुजर जाएंगे लेकिन मुझसे नहीं गुजरेगा वो लम्हा उसे कहना। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे,

कि ये राज राज रहना चाहिए किसी के लिए भी। हर किसी के साथ, जिंदगी के साथ बहुत सारे मामले इज्जतदार बने। किसी की इज्जत अगर आपके पास महफूज है तो उसको अपने तक ही रखें। अगर बाकी किसी को इशू नहीं है तो मैं उसका कंसर्न नहीं है मुझे, लेकिन मैं कम से कम सो थैंक यू सो मच। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी देखें जाते हुए आपसे माजर जरूर करूंगा कि लाइफ है और जिंदगी का कोई पता नहीं है कि कल मुलाकात हो ना हो, हमारी दोबारा आपसे बात हो ना हो, बस इतनी सी जिंदगी है। बहुत अच्छे से गुजारें, खुश रहें, वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए अज़्म के साथ, और भूल नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, ये आपने साबित करके दिखाना है, यू डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी।

तनहाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें। मुकद्दर है ये तनहाई, ये ना मालूम था हमें करके तनहाई में तुमसे कुछ मीठी ही मीठी बातें। अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें। आ जाना, मिटा जाना इस तनहाई को कि फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़।

वो कहती है सुनो जाना, वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तपिश ये बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। मैं कहता हूं कि जिस दिल में जरा भी बदगुमानी हो वहां कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है सदा ऐसे ही क्या तुम मुझको चाहोगे कि मैं इसमें कमी कोई भी गवारा कर नहीं सकती। मैं कहता हूं मोहब्बत क्या है ये तुमने सिखाया है मुझे, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। वो कहती है जुदाई से बहुत डरता है दिल मेरा कि खुद को तुमसे हटकर देखना मुमकिन नहीं है अब। मैं कहता हूं यही खदशे बहुत मुझको सताते हैं, मगर सच है मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। वो कहती है बताओ क्या मेरे बिन जी सकोगे तुम, मेरी बातें मेरी यादें मेरी आंखें भुला दोगे। मैं कहता हूं कभी कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, अगर एक पल को भी सोचूं तो सांसें रुकने लगती हैं। वो कहती है तुम्हें मुझसे मोहब्बत इस कदर क्यों है कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूं। मैं कहता हूं कभी खुद को मेरी आंखों से तुम देखो, मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। वो कहती है मुझे वारफ्तगी से देखते क्यों हो कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूं। मैं कहता हूं मताए जां बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूं जिंदगी महसूस करता हूं। वो कहती है मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते कि तुम्हें बता सकूं कि दिल में मेरे कितनी मोहब्बत है। मैं कहता हूं मोहब्बत तो निगाहों से झलकती है, तुम्हारी खामोशी मुझसे तुम्हारी बात करती है। वो कहती है बताओ ना किसको खोने से डरते हो, बताओ कौन है वो, कौन है वो जिसे ये मौसम बुलाते हैं। मैं कहता हूं ये मेरी शायरी है आईना दिल का, जरा देखो बताओ क्या तुम्हें इसमें नजर आया। वो कहती है कि आतिफ जी बहुत बातें बनाते हो, मगर सच है ये बातें बहुत ही शाद रखती हैं। मैं कहता हूं ये सब बातें फसाने एक बहाना है कि पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाएं। सब बातें फसाने एक बहाना है के पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाएं। फिर उसके बाद खामोशी का दिलकश रक्स होता है, निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं। खामोशी का दिलकश रक्स होता है, फिर उसके बाद निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं।

जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, मैं हूं कि कोई और है, दुनिया है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखो ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। और हर बज्म में मौजू सुखन दिल जदगां का, अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। और वो वक्त ना आए, वो वक्त ना आए कि दिले जार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो। आबाद हम आशुफ्ता सरों से नहीं मक्तल, ये रस्म अभी शहर में जिंदा है कि तुम हो। है जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे थी, हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। हर बज़्म में मौजू सुखन दिल जदगां का, अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो।

दर्द दिल आज भी है, जोश वफा आज भी है, जख्म खाने का मोहब्बत में मजाज भी है। गर्मियां इश्क निगाहों में नहीं है ना सही, मुस्कुराती हुई आंखों में हया आज भी है। हुस्न पाबंद कफस, इश्क असीर आलाम, जिंदगी जुर्म मोहब्बत की सजा आज भी है। और हसरतें अजीज़ का सरमाया बनी जाती हैं, सीना इश्क पे वो मुश्क जफा आज भी है। दामने सब्र के हर तार से उठता है धुआं, और हर जख्म पे हंगामा उठा आज भी है। अपने आलाम व मसाइब का वही दरमा है, दर्द का हद से गुजरना ही दवा आज भी है। गर्मी इश्क निगाहों में नहीं है ना सही, मुस्कुराती हुई आंखों में हया आज भी है।

0: मोहे सुंदर मुख दिखला।
1: आपकी आवाज नहीं आई, इसकी दोबारा कोशिश कर लीजिएगा। बहुत खूबसूरत आपने सॉन्ग गाया, और मेरा ख्याल है कि जो लम्हा था असल गाना शुरू होने वाला, वो हमसे मिस हो गया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब, कौन है, कहां से?
2: शादी में आतिफ अब्बास से बात करूं।
1: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हरियत से हैं।
1: मैं अच्छा हूं, आप ठीक हैं?
2: माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम हमेशा की तरह। इस मौसम में तो और ही मजा है यहाँ पे, मम्बरी में बहुत ठंड है यहाँ पे।
1: अच्छा, ये ना बताइए जनाब, ये तो दिल जलाने वाली बात है। दिल जलाने की बात करते हो, ऐसा कुछ था ना?
2: जी बिल्कुल, वो भी हमने कहीं पढ़ा था।
1: चले सुनाइए, क्या सुनाएंगे?
2: आज मैं लाया हूँ अहमद नदीम कासमी साहब।
1: ठीक है, इरशाद।
2: वो फरमाते हैं कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
2: इस कदर प्यार है इंसान की खताओं से मुझे, ये फरिश्ता मेरा मायार नहीं हो सकता।
1: बहुत अच्छा।
2: ऐ खुदा फिर ये जहन्नम का तमाशा क्या है, तेरा शाहकार तो फिन्नार नहीं हो सकता।
1: वाह वाह वाह।
2: है हकीकत को फकत ख्वाब समझने वाले, तू कभी साहिबे असरार नहीं हो सकता।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
2: सरे दीवार ये क्यों नेख की तकरार हुई, घर का आंगन तो कभी बाजार नहीं हो सकता।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
2: मैंने भेजा तुझे ऐवाने हुकूमत में, मगर अब तो बरसों तेरा दीदार नहीं हो सकता।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
2: तीरगी चाहे सितारों की सिफारिश लाए, रात रात से मुझको सरोकार नहीं हो सकता।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
2: वो जो शेरों में है एक शेर ऐसे अल्फाज नदीम, इसका अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता।
1: वाह वाह वाह, इसका अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता। बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी।
2: तो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: सलामत रहिए, आबाद
2: रहिए, खुश रहें, सलामत रहें, तमाम सुनने वालों को सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

अपने आलाम और मसाहिब का वही दरमा है, दर्द का हद से गुजरना ही दवा आज भी है, ऐसा ही जिक्र किया एक कॉलर ने भी। अपने आलाम और मसाहिब का वही दरमा है, दर्द का हद से गुजरना ही दवा आज भी है। क्या है कि ये दर्द अकेला आया नहीं करता, ये जज्बात जो इंसान की जात के अंदर पनपते हैं और कहीं इनका ताल्लुक मोहब्बतों से हुआ करता है, इन मसाइब को, इन आलाम को, इस दर्द को इंसान खुशी खुशी तस्लीम करता है। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले पावां, यार फरीदा जे मिल जाए सोना मैं रो रो हाल सुनावा। इन मसाइब का शायद इंतजार हुआ करता है मोहब्बत करने वालों को। कायनात का एक उसूल है कि सदा कुछ भी रहता नहीं है, एक सा कुछ भी रहता नहीं है, हर शय को जवाल है, हर शय को उरूज है, लेकिन ना वो जवाल हमेशा रहता है ना वो उरूज हमेशा रहता है। और समझ जाया करते हैं इश्क वाले मोहब्बत वाले इस बात को, और जो जितना जल्दी समझ जाते हैं उतना आसान रहता है उनके लिए अपने दर्द का दरमा करना। बानो कुत्सिया ने कहा था कि मोहब्बत वो पिंजरा है जिसमें हम खुद को कैद रखते हैं और उसका दरवाजा खुला होता है, हम निकलना नहीं चाहते उस परिंदे से, उस पिंजरे से। शायद इस जज्बे में इतनी शिद्दत हुआ करती है कि इंसान उसके सुरूर से हज उठाना चाहता है। हमारे पास हमारा तखय्युल और जिस पर हमारी पूरी गिरफ्त हुआ करती है उसी के जोर पर सही इस जज्बे को महसूस करते रहना चाहते हैं। इसका जवाल कबूल नहीं हुआ करता।

उजाड़ राहों में जो मिलेंगे वो खार सारे संभाल रखना, उजाड़ राहों में जो मिलेंगे वो खार सारे संभाल रखना, जो मेरी यादों का मरहला हो तो मेरे दामन में डाल रखना। न छू सकोगे बुलंदियों को, यूं ख्वाहिशों को ना तूल देना। नसीब तुमको दगा ही देगा, मोहब्बतों में जवाल रखना। वफा की दुनिया में हम रहेंगे, दगा की दुनिया में तुम अगर हो। वफा की दुनिया में हम रहेंगे, दगा की दुनिया में तुम अगर हो। हर एक दिल की ये आरजू है कि मुनफरिद सा कमाल रखना। हवाएं हवाएं भी अब जहर रसा हैं, जो रोज हम पे तमाश भी हैं। अजल से दिल का ये मशगला है मिलन की ख्वाहिश को पाल रखना। ना उनके आने की आस रखना, ना दिल को अपने उदास रखना। कहीं ये सपने झुलस न जाएं, ना अब किसी से विसाल रखना। जमाना बदला है तुम भी बदलो, वफा शायरी का जौक छोड़ो। संभला मोहसिन यूं बेसबब ही, ना जिंदगी को निढाल रखना। वफा की दुनिया में हम रहेंगे, दगा की दुनिया में तुम अगर हो। हर एक दिल की आरजू है कि मुनफरिद सा कमाल रखना।

0: बहुत खूबसूरत गाया आपने,
1: थैंक यू सर,
0: बहुत खूबसूरत गाया। ड्रामा तो नहीं शुरू होना अब, ये गाना ही था। चलो सलामत रहिए, अब बात रहिए, अब बात रहिए, बहुत शुक्रिया।

0: एक और कॉल शामिल कर लेते हैं जी, फिर कुछ गुफ्तगु करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब,
1: कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ जी। कौन है, कहाँ से?
1: मैं रवाब से नसीम बात कर रही हूँ।
0: ठीक है, आप ठीक
1: हैं? भाई मैं तो कुछ सुना नहीं सकती हूँ, मैं चाहती हूँ आप हमें सुनाएं।
0: मैं तो सुना ही रहा हूँ।
1: नहीं नहीं, मैं जो कहती हूँ वो आप सुनाए ना, जो मैं कहूँगी।
0: चलें बताए।
1: एक गजल है नईद अख्तर की आवाज में है,
0: कौन सी? दोबारा बताइए गजल।
1: आठ साल लग जाएंगे।
0: गजल दोबारा बताइए।
1: जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा हिरम देखते हैं।
0: अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ।
1: आप पढ़े ना ये।
0: ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
1: ठीक है,
0: बहुत शुक्रिया।
1: सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम
1: अल्लाह।

जब रातें भूजल हो जाएं, जब लोग घरों में सो जाएं, जब बर्फ रगों में जम जाए, जब कहर बदन पर टूट पड़े, जब लम्स के सूरज बुझ जाए, जब सात आखिर आ पहुंचे, तो किसको पुकारें, किससे कहें, क्या लज्जत थी उन रातों में, क्या नशा था घर की बातों में, क्या रग रग में लहराता था, क्या क्या तितली जैसे मंजर थे, सांसों में सात समंदर थे, अब हद नजर तक सहरा है एक काफिला जिसमें ठहरा है।

सकूते शाम मिटाओ बहुत अंधेरा है, सुखन की शम्मा जलाओ बहुत अंधेरा है। दयारे गम में दिले बेकरार छूट गया, संभल के ढूंढने जाओ बहुत अंधेरा है। ये रात वो के सूझे जहां ना हाथ, सुखन की शम्मा जलाओ बहुत अंधेरा है। दयारे गम में दिले बेकरार छूट गया, संभल के ढूंढने जाओ बहुत अंधेरा।

0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: काफी
0: ठीक है, आपकी आवाज अभी भी वैसे कटती रही है, लेकिन आपने गाना बहुत अच्छा गाया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आपको कलाम सुनाना चाहती हूँ छोटा सा।
0: नाम बताइए अपना।
2: मैं हिबाई बात कर, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी।
0: अच्छा, आप दोबारा आई हैं आपने। अच्छा, सुनाए सुनाए।
2: मान लगी कर वो रे हथ दिया उंगला

0: सलामत रहिए, सलामत रहिए. आवाज क्योंकि कट रही है और मेरा ख्याल इतना काफी है. ठीक है, सलामत रहिए, आबाद रहिए. बहुत शुक्रिया.
1: मुझे बताइए कि मैंने कैसे पढ़ा.
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
1: थैंक यू.
0: सलामत रहिए, आबाद. कुछ गुफ्तगू का रब्त बांधने की काविश करते हैं जी, जहां से बात चली थी फिर से उसको जोड़ने की कोशिश. एक तन्हा रात और उस तन्हा रात में अपने दर्द अपने सामने रख के उस रात की तारीकी में अपने वजूद के साथ वक्त गुजारता हुआ इंसान अपना वजूद, यूं कहूंगा कि जो माजी गुजर चुका होता है इंसान खुद को कभी उससे इतना मंसूब रखता है कि कुछ अलग दिखता ही नहीं है, कुछ अलग लगता ही नहीं है. रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा हुई, रांझा रांझा आंखों नी मैनू हीर ना आखो कोई. अपना वजूद कहीं खो जाता है और उसकी तलाश में इंसान

आधा रातें अपने माजी के साथ काटता चला जाता है। लेकिन जैसा कि पहले कहा, हर अरूज को एक जवाल है और हर जवाल को एक अरूज है। समझते हैं इस बात को मोहब्बत वाले, लेकिन वो दर्द से इतनी हज उठा रहे होते हैं कि नहीं चाहते कि वो दर्द भी जल्द खत्म हो जाए। एक बड़ी अजीब बात पाई जाती है मोहब्बत करने वालों में कि जो उनके अपने जहन में, जो उनके अपने तखय्युल में चल रहा होता है, जो वो महसूस कर रहे होते हैं, उनको यूं लगता है कि बयान ही ये सब कुछ वहां भी पहुंच रहा है। अपने तसव्वुर के जोर पे ही सही, लेकिन उस शख्स को अपने साथ महसूस करते हैं और फिर चाहे शिकवे करें, चाहे गिले करें, चाहे मोहब्बत का इजहार करें या चाहे अपना दर्द बयान करें। या चाहे उसके सामने वो माजी जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत लगता था, वो माजी उसके सामने बयान करें, वो लम्हे उसके सामने ला खड़े रखें। एक एक लम्हा और एक एक वादा, एक एक जुमला जो मुनक्कश हुआ करता है उनके अज़हान में बहुत ताजगी के साथ, और उसको वो किसी तौर मिटने नहीं दिया करते। और वो एक एक जुमला, एक एक मुनक्कश हर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं अपने तसव्वुर के जोर पर उस शख्स को जो महसूस हो रहा होता है उस वक्त में। हम तुझे दिल मानते थे,

उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। याद है हम तुझे दिल मानते थे, अपने सीने में मचलता हुआ जिद्दी बच्चा, तेरे हर नाज को उंगली से पकड़कर अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे। तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन के तमन्नाओं की बिनाई से हम देखते थकते ही न थे, हम देखते थकते ही न थे। सोचते थे एक छोटा सा नया घर नया माहौल मोहब्बत की फजा हम दोनों, और किसी बात पर तकियों से लड़ाई अपनी। फिर लड़ाई में कभी हंसते हुए रो पड़ना और कभी रोते रोते हंस पड़ना, और थक हार के गिर पड़ने का मासूम खुशबख्श ख्याल याद है।

याद है हम तुझे सुख जानते थे, रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था, याद है। याद है हम तुझे जहां कहते थे, तेरी तेरी खामोशी से हम मर जाते, तेरी आवाज से जी उठते थे, तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी शरियानों में, थाम लेने से कोई शहर सा बस जाता था वीरानों में, याद है। याद है हम तुझे मिलने के लिए वक्त से पहले पहुंच जाते थे, और मुलाकात के बाद हम बहुत देर से घर आते, बहुत देर से, बहुत देर से घर आते तो कहते कि हमें कुछ ना कहो, हम बहुत दूर से घर आए हैं, इस कदर दूर से आए हैं कि शायद ही कोई आ पाए, याद है। याद है हम तुझे भगवान समझते थे, मगर कुफ्र से डर जाते थे, तेरे छिन जाने का डर ठीक से रखता था मुसलमान हमें, तेरे छिन जाने का डर, तेरे छिन जाने का डर ठीक से रखता था मुसलमान हमें, आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, तेरे भूले हुए रस्तों पे लिए फिरता है ईमान हमें, और कहता है कि पहचान हमें, याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे, ना किसी शाम किसी किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए।

खींचकर रात की दीवार पे मारे होते, मेरे हाथों में अगर चांद सितारे होते, खींचकर रात की दीवार पे मारे होते, मेरे हाथों में अगर चांद सितारे होते। हमने एक दूजे को खुद हार दिया, दुख है यही, काश हम दुनिया से लड़ते हुए हारे होते। इतनी हैरत तुम्हें मुझ पर नहीं होनी थी अगर तुमने कुछ रोज मेरी तरह से गुजारे होते। यार क्या जंग थी जो हार के तुम कहते हो, जीत जाते तो खसारे ही खसारे होते। और ये जो आंसू हैं मेरी पलकों पे पानी जैसे, उसकी आंखों से उभरते तो सितारे होते। ये जो हम लोग हैं एहसास में जलते हुए लोग, हम जमीन जाद ना होते तो सितारे होते। खींच कर रात की दीवार पे मारे होते, मेरे हाथों में अगर चांद सितारे होते।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाज़त लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो काबिश हुआ करती है कि आपकी समातों के तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं, शामिल करना चाहूँगा।

इंसान अपने जज्बात से, अपने एहसासात से और गुजरते वक्त से मजबूर यूं हुआ करता है कि उसकी गिरफ्त में कुछ भी होता नहीं है। इंसान जिसको इरादा इख्तियार दे दिया गया और उसकी कोई कैद नहीं है, उसको तखय्युल दे दिया गया और उसकी वसत को मापा नहीं जा सकता। वो इंसान इन जज्बात और एहसासात के आगे मात खा जाया करता है। ये उसको निर्गे में ले लिया करते हैं, जब तो उसकी दुनिया बदल जाती है। उसके गिरफ्त में ये तखय्युल रहता नहीं है, उसकी गिरफ्त में ये इरादा इख्तियार रहता नहीं है। जैसे कोई गिरदाब हो और कोई रास्ता नज़र आ रहा हो, लेकिन कैसा अजीब होता है इंसान के उस वक्त में उस गिरदाब से निकलना ही नहीं चाहता। वो उस तलातम को अपनी जिंदगी मान लिया करता है और ना जाने कौन सी उम्मीद हुआ करती है कि उस तूफान से लड़ता चला जाता है, यहाँ तक कि हफने नहीं लग जाता, थक नहीं जाता, मुजमहिल नहीं हो जाता। और कुछ तो मुजमहिल होने के बाद भी अपने बेजान वजूद को उन्हीं लहरों के सुपुर्द किए रखते हैं, क्योंकि उस मुसाफत से शायद मोहब्बत होती है, उस सफर से मोहब्बत होती है। जिस मुसाफत में वो जज्बात परवान चढ़ते हैं, जिसको मोहब्बत का नाम दे देते हैं या इश्क का नाम दे देते हैं, क्या है कि ये जज्बे हमें यूं लगता है कि शायद उभर कर सामने आए हैं, हमें इनसे आशना किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मोहब्बत का जज्बा हर इंसान को वदियत कर दिया जाता है, जो उसकी जात के अंदर कहीं मुंजमद रहता है और किसी वक्त की कोई तमाज़त उसको पिघलाने लग जाती है। मोहब्बत वो जज्बा जो एक वक्त में दो लोगों पर वारिद होता है। जब किसी चेहरे में पूरी कायनात नजर आती है, जब किसी चेहरे में अपना सब कुछ नजर आता है, जब कोई खुशबू फजा को मुअत्तर कर दिया करती है, जब कोई मुस्कान हर तरफ रौनक बिखेर दिया करती है, जब कोई लम्स वजूद में सुकून उतार दिया करता है, जब कोई आवाज समाहतों में रस खोल देती है, इंसान उस मोहब्बत को महसूस करना चाहता है। लेकिन जैसा कि कहा कि हर शय को एक जवाल है, तो क्या मोहब्बतों को भी जवाल होते हैं? हाँ, मोहब्बतों को भी जवाल होते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है, ये मोहब्बत अपने जाब्तों के साथ वारिद होती है, ये मोहब्बत अपने जाब्तों के साथ उतरती है। तभी शायद वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि जमीन के सफर में अगर कोई शय आसमानी है तो वो मोहब्बत है, और इसके जाब्तों में एक जाब्ता ये हुआ करता है कि इसको जवाल तब आ जाता है जब इसको हम दो लोगों तक महदूद कर देते हैं, या किसी एक शख्स तक महदूद कर देते हैं। ये मोहब्बत का जज्बा हमारी जात के अंदर मुंजमिद उस एक शख्स की वजह से पिघलने तो लग जाता है, लेकिन जब ये उभर कर सामने आ जाए तो फिर इंसान को सरापा इश्क बना दिया करता है। और वहां इंसान गलती ये कर जाता है कि इस जज्बे को बस एक वजूद तक महदूद कर देता है, और फिर इसके जवाल को सहना उसका मुकद्दर बन जाता है। मोहब्बत के जाब्ते, मोहब्बत के करीने जो समझ जाते हैं वो सरापा इश्क हुआ करते हैं, उनको राहें ढूंढनी नहीं पड़ती।
ख्वाहिश करते हैं किसी राह की जिस पर चलना है, तो उनको उनको नजर आ जाती है, उनको बता दी जाती है वो राह जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं, जिस पर वो झूमते चले जाते हैं अनंत अलैहिम वालों की सफों में शामिल होते हुए, जहां रास्ते की कोई रुकावट कोई तकलीफ उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, क्योंकि उनके हां नफा और नुकसान के मानी बदल चुके होते हैं। यहां होना ना होना है, ना होना एन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। उनका नफा नफा नहीं हुआ करता, रहमत हुआ करता है, उनका नुकसान नुकसान नहीं हुआ करता, मसलहत हुआ करता है। वो मुकम्मल इश्क हो जाते हैं जब दर्द के मानी समझ जाते हैं, मोहब्बत के मानी समझ जाते हैं, सुकून किसे कहते हैं, तमानियत क्या हुआ करती है, तन्हा रात का अजाब क्या होता है, और उस स्याह रात के बाद जो सूरज की पहली किरण होती है वो क्या नवीद लेकर आती है। गर्ज़ की कोई शय उनके नजरों के सामने से यूं ही गुजर नहीं जाती, हर शय में उनको मोहब्बत के जाब्ते नजर आते हैं। जब वो नजर दौड़ाते हैं इस कायनात की हर ताज़ीन और आराइश में, उनको मोहब्बत नजर आती है, वो मोहब्बत जो रब्बे कायनात ने की अपनी मखलूक से, रंग बिखेर दिए जबान पर, जायके देकर तरह तरह के फल पैदा कर दिए, नजारों को खूबसूरत कर दिया और हमें बसारत दे दी, मौसीकी बिखेर दी और हमारी समातों को उससे हज उठाने वाला बना दिया। फिर धीरे धीरे हमें दर्द के मानी समझ आने लग जाते हैं, मोहब्बत के मानी समझ आने लग जाते हैं, इश्क के मानी समझ आने लग जाते हैं।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।